0: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: उन्नत कृषि।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM और आप सभी के साथ हैं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे अनु। मेरे किसान भाइयों और पशुपालक भाइयों, आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज उन्नत कृषि में लेकर आई हूं मैं बटेर पालन के बारे में कुछ बातें। आप सभी ने मुर्गी पालन के बारे में बहुत सुना होगा। इसके अलावा अगर बात करें बटेर पालन की, यानी कि जो आज का हमारा विषय है इसके बारे में बात करें, तो आपको बता दें बटेर पालन को अगर आप एक व्यवसाय के तौर पर लेते हो, यानी कि इससे अगर आर्थिक मुनाफा आप कमाना चाहते हो, तो आप सभी को बता दूं मैं, मेरे दोस्तों और मेरे श्रोतागणों, कि ये बहुत ही अच्छा एक माध्यम है जिससे कि आपको कम अवधि में बहुत ही अच्छा मुनाफा होता है। अगर बात करें मुर्गी पालन की, तो उसमें समय भी ज़्यादा लगता है और मुनाफा भी इतना नहीं होता है। तो सबसे पहले आज बहुत सारी बातें करने वाले हैं बटेर पालन के बारे में। अगर आपकी बटेर पालन शुरुआत करना चाहते हैं आप, तो इसके लिए आपको किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रोनॉमी बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले बटेर पालन की बात हो रही है, तो हम जानना चाहेंगे कि बटेर पालने के लिए हमारे पास इनके आवास का प्रबंधन कैसा होना चाहिए।
4: जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज बता दूं आपको कि बटेर पालन, बटेर को हम लोग क्वेल कहते हैं इंग्लिश में, जो जैपनीज बटेर है जिसका पालन पहले प्रोहिबिटेड था, जिसका कि पालन तो करते थे लेकिन इसके शिकार पर प्रतिबंध लगा हुआ है। लेकिन हम लोगों ने एक प्रजाति जो जैपनीज बटेर के नाम से है, इसको विकसित किया कैरी, जो सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है इज्जत नगर में, इसके द्वारा, और इसको पॉपुलराइज किया गया।
3: जी जी।
4: इसकी कई प्रजातियां हैं जो पंख के रंगों के आधार पर, फराव हैं, टॉक्सिडो हैं, इंग्लिश वाइट है, मैंचूरियन गोल्ड है, तो इस प्रकार से इनको विकसित किया गया कि जो कम समय में और काफ़ी मुनाफा देने वाला चीज़ है, जिसमें कि किसी प्रकार की कम से कम रोग होता है और इसमें किसी प्रकार के टीकाकरण की भी आवश्यकता नहीं है। अर्थात केवल रख रखाव पर ध्यान दे के आप आसानी से मुनाफा कमा सकते हैं। और जहाँ तक जगह की बात है, जो आवास प्रबंधन की बात है, इसके लिए कोई बहुत बड़ा घर बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास, आप जिस प्रकार का व्यवसाय करना चाहते हैं, बड़े पैमाने पर, छोटे पैमाने पर, तो एक 10x10 का भी अगर कमरा है आपके पास, तो उसमें 10x10 में आप 400 बटेर तक का पालन कर सकते हैं।
3: जी।
4: और घर की ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं भी है तो काम चलेगा। लेकिन एक चीज़ है, ये उड़ने वाला पक्षी है, इसलिए इसको कंप्लीट जाली लगाकर या बंद करके आपको रखना पड़ेगा। और इसके रखने में आपको मुर्गियों से कम सावधानी रखने की ज़रूरत है। अर्थात नीचे कोई बेडिंग मटेरियल, हल्का बेडिंग मटेरियल आप दे सकते हैं, 4-5 इंच का बेडिंग मटेरियल होगा और नेचुरल डे लाइट काफ़ी है। लेकिन इसके आवास व्यवस्था में इसके जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, 10 ग्राम से भी कम वजन के होते हैं, तो उस समय इसको विशेष सावधानी की जरूरत होती है। लाइट देने की आवश्यकता पड़ती है, टेम्परेचर देने की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग बात कर रहे हैं जैपनीज क्वेल, कुटर्निस कुटर्निस जैपोनिका
3: जी,
4: इसकी। और इसके बारे में, आवास प्रबंधन के बारे में, आप जैसा मैंने बताया

0: एक 10x10 के रूम में भी इसका आप पालन करके आप आसानी से मुनाफा कमा सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, ये बात हो गई आवास प्रबंधन की, यानी कि कैसा उनका जगह रहना चाहिए जहाँ उनका पालन होना चाहिए, और उसके बाद आहार की अगर बात करते तो उन्हें किस किस तरीके का आहार देना चाहिए?
0: जहाँ तक अलग अलग स्टेज के लिए अलग अलग इस तरह का राशन दिया जाता है, इसको दाना दिया जाता है। जैसे जब छोटा जब चूजा रहता है उस समय हम लोग इसको प्री स्टार्टर देते हैं। अगर आप बड़े पैमाने पर कर रहे हैं तो बटेर का दाना अलग से भी आता है, लेकिन अभी बाजार में जो मुर्गियों के लिए दाना है प्री स्टार्टर, आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके बच्चे काफी छोटे होते हैं तो इनिशियल स्टेज में आप उसका जो महीन दाना है उसको दें, और फिर जब ये दूसरा सप्ताह का हो जाए, 2 सप्ताह से ऊपर हो जाए, तो फिर हम इसमें स्टार्टर क्रम्बल या स्टार्टर का जो दाना होता है स्टार्टर क्रम्बल दे सकते हैं। और फिर फिनिशर 4 से 5वां सप्ताह में ये अपने वजन का 150 ग्राम से 200 ग्राम के बीच में आ जाता है, और उस समय आप बेच सकते हैं इसको और मीट पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक अंडा देने की बात है तो 6ठे 7वां सप्ताह से ही अंडा देने लगती है, और 8वां सप्ताह होते होते ये फुल स्विंग में अंडा देना शुरू करती है। और पूरे साल में ये अगर इसको दाना पानी अच्छा से मिलता रहा, इसके व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो 250 अंडा तक ये दे सकते हैं आसानी से। तो इसके लिए उस समय, लेकिन उस समय इसको लेयर फीड फिर चाहिए जिसमें कैल्शियम की अधिकता हो। तो अलग अलग समय में अलग अलग तरह का दाना देना है, और प्री स्टार्टर, स्टार्टर, फिनिशर और लेयर, चारों स्टेज का दाना इसमें अलग अलग स्टेज में हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
1: मांसाहारी लोग हैं, अगर उनकी बात करें जो मुर्गी खाते हैं, तो अगर मुर्गियों की बात करें तो बटेर पालन जो है वो मुर्गी पालन से किस तरीके से अलग है, उसके बारे में जानना चाहेंगे।
0: देखिए, मुर्गी पालन में सबसे बड़ी बात है कि बहुत टीकाकरण करने, बहुत बीमारियां होती है मुर्गियों में। फ्रॉम द बिगिनिंग 1 दिन से लेके मैरेक्स का टीका पड़ता है, फिर रानी खेत का टीका पड़ता है, फिर गंबोरो का टीका पड़ता है, फिर उसका फाउल पॉक्स का टीका पड़ता है, रानी खेत का दूसरा टीका पड़ता है। तो इस प्रकार से अलग अलग स्टेज में मुर्गियों में अलग अलग टीके पड़ते रहते हैं। और लेकिन बटेर पालन में सबसे जो अच्छी बात है कि किसी भी प्रकार के टीकाकरण की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपको अगर हम चाहें तो जो आजकल का जो ट्रेंड है ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक विधि से भी हम बटेर पालन कर सकते हैं। जहाँ तक बटेर पालन का जो फीड है उसमें हम जो बोन मील, फिश मील इस्तेमाल करते हैं उसके जगह सोयाबीन मील का इस्तेमाल करके भी हम इसका पालन कर सकते हैं। और एक जो एक मुर्गी के रहने की जगह के में कम से कम 8 से 10 बटेर एक साथ रह सकता है,
1: यानी कि तो कुल मिला के देखिए
0: जगह की कमी चाहिए। और कम समय में 4 से, हालांकि मुर्गियों में भी आजकल जो हाइब्रिड मुर्गियां हैं वो भी 4 से 5 सप्ताह में 1.5 केजी से ऊपर वेट कर लेती हैं, और उनको भी हम सोल्ड कर सकते हैं। लेकिन जो अगर कैलोरी के हिसाब से देखें और कोलेस्ट्रॉल की बात करें, तो डॉक्टरों के द्वारा भी सलाह दी जाती है कि वैसे जो पेशेंट हैं वो बटेर का मीट खा सकते हैं। तो बटेर पालन हर प्रकार से मुर्गी पालन व्यवसाय के साथ साथ भी किया जा सकता है, उसके अलावे भी अलग से भी किया जा सकता है। हालांकि अभी मार्केट में बटेर पालन, बटेर लोगों को बटेर के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, जिसके चलते बहुत बड़ा मार्केट बटेर पालन का नहीं है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ लोगों को जानकारी हो रही है, और बटेर के लिए भी व्यवसाय को तौर पर बटेर को भी कई लोगों ने अपनाया है और मार्केटिंग व्यवस्था पर बल दिया है। तो अब इस व्यवसाय को भी हम बड़े तौर पर कर सकते हैं, और मुर्गी पालन के साथ साथ भी कर सकते हैं, मुर्गी पालन के अतिरिक्त भी कर सकते हैं।
1: तो जैसा कि बताया आपको, तो श्रोतागणों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि मुर्गी पालन से कहीं ज़्यादा बेहतर है, जैसे कि इनके रखरखाव में आपको कम ध्यान रखना पड़ता है वनस्पत मुर्गी पालन के, और इसके बाद भी उन्होंने टीकाकरण की बात की, कोलेस्ट्रॉल की बात की, तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं बटेर पालन मुर्गी पालन से बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले यहाँ पर बात हो गई कंपेरिजन के बारे में, मुर्गी पालन और बटेर पालन के कंपेरिजन की बात हो गई, तो अब यहाँ पर जानना चाहेंगे कि बटेर पालन अगर हम करते हैं तो इसकी खासियतें क्या है वो जानना चाहेंगे हम, ताकि जो लोग हैं इसे प्रभावित हों, और बटेर पालन को अगर व्यवसायिक तौर पर आप अपनाना चाहते हैं तो सब सबसे पहले जरूरी होता है कि उनकी खासियतें जानना, तो जानना चाहेंगे हम आपसे डॉक्टर साहब।
0: देखिए बटेर पालन प्रारंभिक अवस्था में बहुत इसलिए इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया क्योंकि सरकार के द्वारा इस पर लाइसेंस व्यवस्था जारी की गई थी, लेकिन जब से इसका फार्मिंग स्टार्ट हुआ और आज के डेट में भी हमारा जो नेचुरल उड़ने वाला बटेर है, जो हमारा घरेलू प्रजाति है, उसके शिकार पर रोक लगी है। लेकिन अब जो प्रजाति की हम लोगों ने कैरी के द्वारा लाकर यहाँ, जिसका कि हम लोग ब्रूडिंग करके उसका हैचिंग करके और उसका फैलाव किए, प्रचार प्रसार किए, तो इसके बाद धीरे धीरे इसका मार्केट आया। हाँ। और आज के डेट में ये स्थिति है कि अब लोगों को भी ये बटेर कुछ बातों को लेकर ज़्यादा प्रभावित करता है। एक तो ये छोटा होता है, जल्दी परिपक्व होता है, इसका मीट स्वादिष्ट होता है, जल्दी अंडा देने लगती है, बहुत काफ़ी अंडा देती है, और इसका मीट स्वादिष्ट होता है, इसका मेडिसिनल वैल्यू भी है। तो इस प्रकार से लोगों को इस बिजनेस के प्रति अट्रैक्शन हुआ। और इसमें जहाँ तक हमने एक बार बताया भी कि किसी भी प्रकार की दवाइयाँ या टीकाकरण के बिना भी बटेर पालन किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग मुर्गी पालन करते हैं, मुर्गी पालन में फास्ट ग्रोथ लाने के लिए कई प्रकार की दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है। तो एक तरह से जो स्वास्थ्य के प्रति लोग सचेत रह रहे हैं,
1: तो उनके
0: उसके हिसाब से भी बटेर का मीट खाना, जिसमें किसी प्रकार की दवा, किसी प्रकार के टीका की भी आवश्यकता नहीं है, हर तरह से सुरक्षित है और वो स्वास्थ्यवर्धक भी है
1: जी।
0: तो जरूरत है कि हम मुर्गी पालन के वैकल्पिक स्रोत के रूप में, और अभी जो स्थिति है मुर्गी पालन व्यवसाय पर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का कब्जा टाइप का हो गया है, लोग छोटे जितने भी किसान थे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत मुर्गी पालन करके अब उनका मुनाफा बहुत कम हो गया है। तो इसके तहत आप वैकल्पिक स्रोत के रूप में इसको अपना के आप अतिरिक्त लाभ कमा सकते हैं।
1: तो यहाँ पर श्रोतागणों, आप सभी को डॉक्टर साहब ने बताया कि कैसे क्या खासियतें होती हैं और कैसे इसका पालन करना, या आवास व्यवस्था की बात हो गई, आहार किस प्रकार का देना चाहिए, और मुर्गी पालन और बटेर पालन के बीच के अंतर को इन्होंने बताया। और कहीं ना कहीं बटेर पालन, और अगर आप मांसाहारी हैं, आप मुर्गी खाते हैं या फिर मुर्गा खाते हैं, तो इस हिसाब से बटेर आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि डॉक्टर्स भी, अगर कोलेस्ट्रॉल की आपको दिक्कत है तो आपको भी डॉक्टर बटेर की ही सलाह देते हैं। लेकिन अभी फिलहाल ये उतना व्यापक तौर पर इसके बारे में जानकारी लोगों को नहीं है विस्तार में, तो इसीलिए आज डॉक्टर साहब हमारे साथ यहाँ पर थे। आप सभी को बहुत सारी जानकारियाँ भी मिली बटेर पालन के, और बटेर की जो खासियतें हैं उनके बारे में भी आप सभी को जानकारियाँ मिली। तो डॉक्टर साहब, आपको इन सभी जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
1: और इसके साथ ही श्रोतागणों, आप सभी से मुलाकातें होती रहेंगी, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें और आबाद रहें। उन्नत कृषि।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: नमस्कार, मैं अजय कुमार 90.8 FM ग्रीन से। मैं आज झुरकुरिया ग्राम के आंगनवाड़ी केंद्र में आया हुआ हूं, जो कि हमारे वार्ड नंबर 13 में अवस्थित है। आज मैं अनुषा दीदी से पोषण से संबंधित कुछ जानकारियां प्राप्त कर रहा हूं। तो अनुषा दीदी, आप यह बताएं कि आप पोषण के बारे में क्या जानते हैं?
4: पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य या जीव भोजन ग्रहण करता है, पचाते हैं और पोषण तत्वों को शरीर में वृद्धि, मरम्मत और ऊर्जा के लिए उपयोग करते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज जैसे आवश्यक पोषक तत्व शामिल है।
3: पोषण को हम अपने जीवन में किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं?
4: पोषण को जीवन में उपयोग करने के लिए आपको संतुलित आहार अपनाना चाहिए। सभी पोषक तत्व शामिल करें। अपने भोजन में सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज जैसे कि फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें और प्रोटीन को शामिल करें। पानी पीते रहें। शरीर के कार्यों के लिए पर्याप्त पानी पिए। जंक फूड से बचें। शक्कर, नमक और वसा वाले प्रोसेस्ड और तले हुए खाद्य पदार्थ का सेवन, नियमित भोजन समय पर भोजन और स्वास्थ्य स्कीम चुने। इस प्रकार पोषण आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, रोगों से लड़ने में मदद करता है और आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है।
3: जी दीदी, ये तो हो गई, हम पोषण को प्राप्त कर लिए। अगर दीदी कोई दवाई ना ले, दवाई के अलावे पोषण के रूप में किस पदार्थ का उपयोग कर सकता?
4: दवाइयों की जगह पर पोषण के लिए संतुलित आहार अपना सकते हैं, जिसमें फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, फलियां और स्वस्थ वसा जैसे नट्स, जैतून का तेल शामिल है।
3: जी दीदी, अगर आदमी को अगर सही से पोषण ना मिले तो क्या क्या परेशानियां हो सकती?
4: ना हो तो वो बहुत कुपोषण का शिकार हो सकता है। शरीर में कमजोरी और थकान हो सकता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है और कई बीमारियां जैसे एनीमिया, मधुमेह, हृदय रोग हो जाते हैं।
3: जी दीदी, महिलाओं को पोषण से संबंधित क्या उपयोग करनी चाहिए?
4: महिलाओं को पोषण युक्त आहार ग्रहण करने के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए, जिसमें फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन शामिल हो। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्हें आयरन से बचाव के लिए, कैल्शियम हड्डियों के लिए और फोलिक एसिड प्रजनन स्वास्थ्य के लिए जैसे पोषक तत्वों के अतिरिक्त आवश्यकता होती है। खासकर गर्भावस्था और मानसिक धर्म के दौरान, जो उन्हें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है।
3: जी दीदी, तो बच्चों को आप पोषण के लिए क्या सुझाव देना चाहते?
4: बच्चों को पोषण देने के लिए उनके आहार में फल, सब्जियां, साबुत अनाज, प्रोटीन, अंडा, दाल, दूध शामिल करें और खाने के लिए नियमित समय निर्धारित करें।
3: जी दीदी, इन सभी बातों में मैंने एक चीजों को बार बार नोटिस किया कि यहाँ पे एक लीन प्रोटीन नाम का वर्ड आ रहा है, तो हमारे ग्रामीण श्रोता लीन प्रोटीन वर्ड को नहीं जानते हैं, तो लीन प्रोटीन आखिर क्या होता है दीदी?
4: लीन प्रोटीन उस खाद्य पदार्थ को कह सकते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और वसा, खासकर संतुलित वसा और कैलोरी बहुत कम होती है। यह वजन घटाने और मांसपेशियों को खास रख रखाव में मदद करता है।
3: जी दीदी, तो इसी प्रकार से हम पोषण को प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि अभी अनुसार रंजन दीदी ने बताया। और साथ ही साथ हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज एक मुहिम भी चलाती है, अपनी क्यारी अपनी थाली। तो दीदी, इस बारे में आप क्या कर सकते हैं? अपनी क्यारी अपनी थाली के बारे में।
5: आप अगर
3: अपने घर के आसपास ही कोई क्यारी लगाते हैं जिसमें कि आप फल सब्जी अपना उपजा सकें या खा सकें, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन वसा वगैरह दे देती है, क्योंकि वो आपके सामने उपजा हुआ क्या कहते फल या सब्जी है जो कि पूर्ण रूपेण ऑर्गेनिक होती है। तो इनमें हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज सभी ग्रामीणों को भी सहायता करती है, और आप लोग भी ये बताएं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी क्यारी अपनी थाली मतलब कि अपने घर में ही कोई क्यारी लगाता है और वो अपने क्यारी से ही फल सब्जियों को अपने खाने के रूप में उपयोग करता है तो कैसा रहेगा?
4: बहुत अच्छा रहेगा, ये करना है सभी को करना चाहिए कि अपने पास जो भी थोड़ा जगह हो उसमें कुछ भी ना कुछ लगाए जिससे कि हमें प्रोटीन कुछ भी पोषक तत्व तो आसानी से मिल सके।
3: जी दीदी धन्यवाद, धन्यवाद दीदी आपने इतना अपना कीमती टाइम 90.8 FM ग्रीन को दिया, इसलिए 90.8 FM ग्रीन आपको तहे दिल से धन्यवाद करती है। धन्यवाद दीदी।

0: अब जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
2: So, see you at the vaccination center soon.
3: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
5: नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं अनु और उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पके आम के बारे में, खास तौर पर इसके उत्पाद और संरक्षण तकनीक के बारे में जानेंगे। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं विशेषज्ञ डॉक्टर एम ए आफ्ताब। मैं आपको बता दूँ, ये अध्यक्ष खाद्य विज्ञान एवं तुड़ाई उपरांत प्रौद्योगिकी विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद
5: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो पके आम के क्या कुछ उत्पाद बनाए जा सकते हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए।
6: देखिए, अभी पके आम की जहाँ तक बात है, ये पके आम का सीजन अभी चल रहा है
5: जी,
6: और इसमें जो अर्ली वराइटीज़ हैं उसमें जरदालू आ चुके हैं, बम्बई आ चुका है, और उसके बाद फिर मालदे जिसको कि लेंगड़ा भी बोलते हैं वो है, फिर फजली है और भी मल्लिका है, ये सब सारे आम का अब सिलसिला शुरू हो गया। तो ये आम हम लोग, हमारे किसान भाई जानते हैं कि आम का क्या इम्पोर्टेंस है। इसे फलों का राजा कहा जाता है
5: जी, जी।
6: और इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए वो पाए जाते हैं, जो कि विटामिन ए का जो रोल है वो सब लोग जानते हैं कि ये आँख के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है
5: जी, जी।
6: और ऐसे तो और भी सारे विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है इंसान को अपनी ज़िंदगी में, तो वो विटामिन ए का ये प्रचुर मात्रा आम में पाई जाती है। और आम अभी आ चुका है। अब बात ये है कि आम हाईली सीजनल क्रॉप है, हालांकि ये बहुत सी वैरायटीज़ है जो कि अलग अलग टाइम में अलग अलग होते हवाते, ये जुलाई अगस्त तक चला जाता है ये आम का सिलसिला, लेकिन ऐसा लीची के साथ नहीं है। आम के साथ ये हमारा सौभाग्य है कि आम की बहुत सी वैरायटीज़ यहाँ हमारे क्लाइमेट में ग्रो होती है, और आम अभी शुरू हो गया है, अब ये अगस्त तक चलता रहेगा। अब है कि आम जो है, तो चूंकि इतने हाईली प्राइज्ड फ्रूट है, इतना उसका महत्वपूर्ण है, उसका रोल है हमारे बॉडी पर, विटामिन ए है और भी बहुत से फाइटोकेमिकल्स हैं उसमें, विटामिन्स है, मिनरल्स है, तो ये सारा जो है वो सीज़न भर ही हम इस्तेमाल कर पाते हैं, अगर आउट ऑफ सीज़न। और ये खाने में इतना स्वादिष्ट होता है कि बच्चे जवान और बूढ़े सभी इसको लाइक करते हैं। तो आम का जो है, तो हम कुछ जो सीज़न भर है तभी हम इसको यूज़ कर पाएंगे। बाद में इसको यूज़ करने के लिए अगर किसी की ख्वाहिश होती है, किसी की इच्छा होती है कि आम का पेय पदार्थ हम पिए, तो ऐसे तो बाज़ार में बहुत सी सिंथेटिक मिनरल्स, सिंथेटिक बिवरेजेस वगैरह भी उपलब्ध हैं, लेकिन वो कहाँ तक सही है ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन हम आपको आज ये बताएंगे कि आम से प्रसंस्कृत करके कैसे उसके उत्पाद बनाए जा सकते हैं, और कम से कम साल भर तो रखा ही जा सकता है। तो ये जो है, तो हम आज इसमें बताना चाहेंगे कि आम से क्या क्या बन पाता है। इसमें आम से जो है प्रिजर्व्ड मैंगो पल्प, जैसे कि आम का जो गुठली होता है उसको निकाल के

0: छिलका से छील करके हम उसका पल्प को भी प्रिजर्व कर सकते हैं, जो कि बाद में हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि स्क्वैश, स्क्वैश उसी पल्प से, जब पल्प को हमने प्रिजर्व कर लिया है और भंडार में रख के भंडारण कर लिया है, उसके बाद उसका हम स्क्वैश बना सकते हैं। स्क्वैश एक पेय पदार्थ होता है जो कि चीनी के शीरे के साथ मिला के बनाया जाता है, और उसी को जब 3 गुना पानी में मिला दिया जाता है तो ये RTS बन जाता है हमारा, जो कि डायरेक्ट नुक्कड़ पर जो आप पीते हैं, फ्रूटी पीते हैं, या और भी जैसे कि माजा है, ये सब RTS है, रेडी टू सर्व। तो ये माजा वगैरह को जो है तो हम लोग उसमें कुछ गम मिलाया जाता है इसलिए वो गाढ़ा होता है, लेकिन नॉर्मली इसमें 10% ही जूस रहता है, 10-15% मैंगो जूस रहता है। गाढ़ा पीने में इसलिए लगता है कि उसमें गम्स मिलाए जाते हैं और गम्स मिला के उसको पैकिंग किया जाता है। तो ये स्क्वैश और RTS बन गया मैंगो पल्प से। और अब आता है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मैंगो जैम। आजकल बच्चे TV वगैरह में ऐड देखते हैं तो अब टिफ़िन में कोई जो है रोटी भुजिया ले जाना नहीं चाहता है, अब चाहता है कि वो जैम हम ले जाएं। तो मैंगो से हमारे उद्यमी भाई भी इसका व्यवसाय कर सकते हैं जैम बना करके, और घर की महिलाएं भी इसको बना करके रख सकती हैं घर में ताकि बच्चों को भी दिया जा सके, और ये बहुत ही स्वादिष्ट रोटी में खाने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बारे में भी अब ये बताएंगे। अगला प्रोडक्ट है जो 5वां प्रोडक्ट हमने अभी बताने जा रहे हैं वो है डिहाइड्रेटेड मैंगो स्लाइसेस। आप देखते होंगे कि गाँव में मैंगो या दूसरे सब्जी वगैरह को भी सुखौता बनाया जाता है धूप में रख के, लेकिन धूप में रखने से इसका बहुत ही पौष्टिक ह्रास होता है, जिसमें जो विटामिन्स मिनरल्स जो होते हैं उसमें बहुत ही कमी आ जाती है। उसका इनहाइजीनिक कंडीशन में वो चूँकि सुखाया जाता है बाहर धूप में, उसमें डस्ट पड़ जाता है, उसमें बहुत सा इन्फेक्शन लगने का डर होता है। तो इस तरह से अभी जो है विकसित की गई है एक कैबिनेट ड्रायर, वो बिल्कुल बंद डब्बा रहता है, उसमें अंदर में हीटर लगा रहता है और फैन रहता है, तो फैन से जल्द जो है उसको मैंगो स्लाइसेस को काट के और उसको डाल दिया जाता है, और डालने के बाद वो ड्राई करके हम लोग ड्राइड मैंगो स्लाइसेस भी पैक करके रख सकते हैं, और वो काफ़ी दिनों तक रह सकता है। और वो हम लोग ट्रेवल में जा रहे हैं तो आप एक पैकेट रख लिया उसमें मैंगो स्लाइसेस है, तो इस तरह से मैंगो स्लाइसेस को सुखौता बना करके, लेकिन हाँ कैबिनेट ड्रायर में ही हो, तब उसका रंग और उसका जो पौष्टिक का तत्व है वो सब इंटैक्ट रहता है। और अगला है कि कैंड मैंगो स्लाइसेस। कैंड मैंगो स्लाइसेस क्या है कि जैसे कि आप देखते होंगे कि डब्बा में, टीन के डब्बा में वो जो है तो बहुत सी चीज़ आने लगे हैं, अब तो हर जगह मिलने लगा है, ये टमाटर का प्यूरी मिल रहा है, मटर मिल रहा है, आप हल्दीराम का रसगुल्ला देखते होंगे, इसको कैनिंग बोलते हैं, कैनिंग डब्बा बंदी। तो डब्बा बंदी करके भी हम लोग मैंगो स्लाइसेस को रख सकते हैं, वो साल भर रह जाता है, और वो सबसे अच्छा और बिना प्रिजर्वेटिव का ये मेथड है। और इसके लिए लेकिन कुछ उपकरण वगैरह लगते हैं जिसके में लागत आती है, एक बार उपकरण में की लागत में आप पैसा खर्च कर दीजिए फिर अपना काम करते रहिए। तो ये सब उत्पाद हैं, उसके 6 उत्पाद का वर्णन हमने किया है, इसको अब हम बना सकते हैं। और
1: जी तो कैसे बना सकते हैं डॉक्टर साहब, ये भी थोड़ा जानना
0: जरूरी है। उत्पाद बनाने के लिए देखिए एक एक करके मुझे बताना होगा कि प्रिजर्वेशन ऑफ मैंगो पल्प, कैसे हम उसको संरक्षित कर सकते हैं मैंगो के पल्प को। तो मैंगो के पल्प को संरक्षित करने के लिए क्या होता है कि पहले उसको आम को बढ़िया से धो लिया जाता है, वॉशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कि एक्स्ट्रा डर्ट है वो है उसमें जो रस निकल जाता है ऊपर से, जो एसिड बोलते हैं उसको, वो निकल जाता है, वो भी धुल जाना चाहिए। और उसके बाद जो है तो उसको बढ़िया से धो करके उसको पीलिंग नाइफ से, स्टेनलेस स्टील का हो, लोहे का बिल्कुल नहीं हो, उससे हम लोग छील लेते हैं। और छीलने के बाद उसको जो है इसमें थोड़ा सा स्लाइसेस काट लीजिए, अगर आपके पास फ्रूट मिल है तो, फ्रूट मिल कुछ नहीं है बल्कि ये मिक्सी जो घर में है ना उसी तरह का होता है फ्रूट मिल, ज़्यादा क्वांटिटी में अगर किसी को पल्प निकालना है तो वो स्लाइसेस काट करके वो फ्रूट मिल में डाल देते हैं, और उसके बाद उसमें वो होमोजेनाइज होकर के बिल्कुल पिसा जाता है, जैसे हम लोग घर में किचन में मिक्सी वगैरह में अगर छोटे पैमाने पर करके देखना चाहते हैं कोई, तो वो जो है तो घर में मिक्सी में उसको स्लाइसेस को काट करके और उसको बिल्कुल होमोजेनाइज करके बना लेते हैं पल्प। अब पल्प निकालने के बाद क्या किया जाता है कि पल्प निकालने के बाद अगर उसमें रेशा है तो थोड़ा मोटे कपड़े से, मोटे जाल वाले कपड़े से उसको छान लेते हैं, इसलिए कि महीन कपड़े वाले जाल से अगर छानेंगे तो वो उसमें आएगा ही नहीं, बहुत कम आएगा। उसके बाद ताकि उसमें इसलिए छानना ज़रूरी है कि अगर कुछ आम में रेशा वगैरह होता है तो रेशा वाले आम को एक तो लेना ही नहीं है, और जो रेशा वाला आम नहीं है जैसे जरदालू है, उसके बाद मालदा है, जो है ये क्या नाम है, फजली है, मल्लिका है, ये सब को हम आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें मल्लिका और फजली तो काफ़ी बड़े बड़े आम होते हैं, इसको काटने में भी स्लाइसेस उसमें ज़्यादा स्लाइस निकलता है, पल्प पार्ट ज़्यादा रहता है और गुठली की पार्ट कम होता है, इसलिए वो ज़्यादा सूटेबल है। वो करके उसको जो है हम लोग मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं, छान लेते हैं, और छानने के बाद उसको जो है उसमें थोड़ा देर उसको चूल्हा पे चढ़ाते हैं, यानी वो फॉर ए फ्यू मिनट्स, ताकि उसमें से अंदर से मतलब 65 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है उसको दो तीन मिनट, जबकि और लेमैन लैंग्वेज में ऐसा बताएंगे कि आम के जो ये है पल्प है उससे भाप जब निकलने लगे, बिल्कुल हल्का भाप निकलने लगे, मतलब 100 डिग्री तक नहीं टेम्परेचर पहुंचना चाहिए, भाप जब निकलने लगे तो उसको उतार लीजिए, तो इसको पास्तुरीकरण कहते हैं। पास्तुरीकरण हुआ, ये पास्तुराइज कर लिया उसको, उसके बाद उतार लिया, और उतारने के बाद इसमें परिरक्षक डालते हैं, रासायनिक परिरक्षक। इसमें हम लोग नॉर्मली पोटाशियम मेटाबाई सल्फाइड या सोडियम बेंजोएट डालते हैं, सोडियम बेंजोएट अगर डालना है क्योंकि पल्पी है इसलिए सोडियम बेंजोएट ज़्यादा सूटेबल होगा, तो सोडियम बेंजोएट में बेंजोइक एसिड जो होता है वही होता है इसमें, तो वो उसमें 0.02% 200 मिलीग्राम प्रति लीटर, यानी एक ग्राम जो है पाँच लीटर अगर पल्प है तो आप उसमें सिर्फ एक ग्राम डालेंगे, आप 1000 मिलीग्राम एक ग्राम डाल करके उसको स्वच्छ जल में, यानी पानी है उसको बॉयल कर लीजिए, आप बॉयल करके उसमें डाल दीजिए, और डालने के बाद उसमें उसको पूरे पल्प में उसको मिक्स कर दीजिए, अब मिक्स करने के बाद जो है उसको फिर हम लोग अगर हेड स्पेस छोड़ा है तो थोड़ा सा पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड भी ऊपर में थोड़ा दे सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उसके बाद बंद करके उसको सील कर देते हैं, और इस पल्प को हमने प्रिजर्व कर लिया। अब ये पल्प अगले साल तक के लिए प्रिजर्व हो गया, और जब इसकी ज़रूरत पड़ी, मान लिया आपको स्क्वैश बनाना है या आरटीएस बनाना है या जैम बनाना है या कुछ भी बनाना है, तो ये आप इससे निकाल के व्यवहार कर सकते हैं। जब आम का सीज़न ख़त्म भी हो जाए फिर भी आप इसको निकाल करके आप व्यवहार कर, नॉर्मली तो वही करेंगे लोग कि जब प्रिजर्व करेंगे तो उसको जब तक आम चल रहा है उसी से हम अपना बना सकते हैं जो भी बनाना हो उत्पाद, तो उस तरह से वो हम लोग सील करके रख देते हैं। और अब स्क्वैश देखिए, अब स्क्वैश पर आते हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट है स्क्वैश, ये बिवरेजेस में आता है, पेय पदार्थ, नॉन फर्मेंटेड बिवरेजेस।
1: अच्छा।
0: तो अनफर्मेंटेड बिवरेजेस में दो आते हैं, स्क्वैश एंड आरटीएस। तो स्क्वैश बनाने के लिए क्या है कि ये पल्प को हम लोग, मान लिया अगर हम एक लीटर पल्प को हमने लिया और लेने के बाद उसको जो है उसका डेढ़ गुना चीनी का शीरा बना लेते हैं, डेढ़ गुना चीना, दुगना इसलिए नहीं देते हैं कि ऑलरेडी इसमें चीनी है, ये आम मीठा आम है, पका हुआ आम है, ये कच्चा आम अगर हम लेंगे तो कच्चे आम में फिर हमको चीनी दुगना मिलाना पड़ेगा, तो डेढ़ केजी चीनी इसमें हम डालते हैं, और इसमें नहीं डालेंगे मतलब अलग से शीरा में डालेंगे, शीरा बनाने के लिए उसका हाफ पानी डालेंगे, यानी अगर 1.5 केजी चीनी लिया है तो उसमें 750 मिलीलीटर पानी मिला करके उसको गर्म करके शीरा हम लोग तैयार कर लेंगे। अब है कि अगर हम जब शीरा मिला रहे हैं तो हल्का सा उसमें सिट्रिक एसिड मिलाते हैं, 1 किलो चीनी अगर है तो उसमें 4 ग्राम सिट्रिक एसिड, चूँकि हमने 1.5 किलो चीनी दिया है तो इसलिए हमको 6 ग्राम सिट्रिक एसिड को पानी में घोल के उस उबलते हुए नहीं मैंने गर्म जो हम चढ़ाए हैं गर्म करने के लिए ताकि चीनी उसका घुल जाए पानी में, तो उसको हम लोग डाल देते हैं सिट्रिक एसिड को, और सिट्रिक एसिड से क्या होता है कि वो चीनी की जो गंदगी है अगर तो वो भी निकल जाती है, उसमें जो कीड़ा मकोड़ा मान लिया अगर आ गया है तो वो भी निकल जाता है। उसके बाद जब शीरा ये बन जाता है हमारा, चीनी घुल जाता है, सिर्फ चीनी घुलाना है, शीरा को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, और उसके बाद जब इसको जो है हम लोग छान लेते हैं, और छानने के बाद धीरे धीरे उसमें वो जो हमारा पल्प है 1 केजी पल्प है, पल्प को किसी बर्तन में डाल देते हैं, बोतल से निकाल के पल्प में डाल देते हैं या डब्बे से, और उसके बाद 1 लीटर उसमें धीरे धीरे हम लोगों को ये शीरा जो है चीनी का जो सिरप है उसको धीरे धीरे मिलाते हैं और चलाते जाते हैं ताकि वो उसमें विलीन हो जाए, सारा शीरा जो है धीरे धीरे उसमें घुल जाए, और घुलने के बाद ये जो क्वांटिटी मेरा 1 केजी से बढ़ के 2.5 केजी हो गया, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि अब ये शीरा मेरा ये स्क्वैश तैयार हो गया। चूंकि परिरक्षक हमने पहले से दे रखा है उसमें, इसलिए दोबारा परिरक्षक देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम डायरेक्ट बना रहे हैं आम का, तो उसमें हम इस समय परिरक्षक दे सकते हैं, तो उसमें 0.06% डालते हैं पोटाशियम मेटाबाई सल्फाइट, इसमें लिख ली। चूँकि इसमें पानी मिल गया है, इसमें चीनी मिल गया है, हालांकि चीनी भी प्रिजर्वेटिव है, लेकिन उस क्वांटिटी में हम नहीं दे रहे हैं जितना उसमें प्रिजर्व हो सके, तो उसमें एक थोड़ा बहुत जो है प्रिजर्वेटिव भी डालते हैं। तो 0.06% यानी 600 मिलीग्राम 1 लीटर में डालना। तो अगर ये 2 लीटर हमारा बना है पूरा चीनी का सिरप और ये गूदा मिलाने के बाद, तो उसमें हम लोगों को 1200 मिलीग्राम यानी 1 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा सवा ग्राम के करीब उसको हम लोग पोटाशियम मेटाबाई सल्फाइट, इस चीज़ को जान लीजिए। उस समय हम लोग पल्प को प्रिजर्व करने के लिए सोडियम बेंजोएट डाले थे, अभी हमें पोटाशियम मेटाबाई सल्फाइट डालना है और डाल के उसमें अच्छी तरह से मिक्स करके स्टरलाइज बॉटल में, अगर प्लास्टिक का बॉटल है तो पानी से धो के उसको धूप में अच्छा से सुखा के, और उसको जैसे पानी का जो बॉटल मिलता है हम लोग आरओ वाटर वगैरह पीते हैं, उसमें भी प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको करके उसमें जो है बढ़िया से स्वच्छ जल से धो के धूप में सुखाने के बाद हम लोग जो है उसको उसमें भर देते हैं, भरने के बाद कैप को जो है सील कर देते हैं। तो ये हमारा स्क्वैश बन गया। अब स्क्वैश में अगर मुझे व्यवसाय करनी है तो मुझे लाइसेंस लेना होगा, FSSAI का लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस की भी प्रक्रिया अब गवर्नमेंट ने बहुत आसान कर दिया है, वो ऑनलाइन अप्लाई होता है, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट शहर में होता है, तो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में ये इसका पता लगाना होगा कि भाई हमने ट्रेनिंग लिया है या सीखा है, हमारे यहाँ किसी विश्वविद्यालय सबौर में ट्रेनिंग भी हम लोग करवाते हैं, तो ट्रेनिंग आप ले लीजिए, सर्टिफिकेट हो जाएगा, तो उससे आपको बैंक का लोन भी मिलने में आसानी होगी और आपको लाइसेंस भी मिलने में आसानी होगा। तो ये आप करके व्यवसाय भी कर सकते हैं और कर सकते हैं। अब अगर मान लिया RTS बनाना है आपको, नुक्कड़ पर छोटे छोटे 100-150 ml में आपको बाहर भेज करके, जैसे लोग फेंटा कोका कोला जो कोल्ड ड्रिंक जो कार्बोनेटेड बिवरेजेस पीते हैं लोग, तो अब ये लोग जान रहे हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है सिवाय गैस के और कुछ भी नहीं है। तो उसमें क्या है कि आप लोग बिवरेज बना इसी स्क्वैश को अगर 3 times आप मिला देते हैं पानी इसमें, तो ये बन गया RTS। और RTS बनाने के बाद उसको बॉटलिंग कर दीजिए, क्रॉन कॉर्क सीलिंग कर दीजिए, और उसके बाद एक बड़े से पतीली में डाल करके उसको फिर से स्टरलाइज करना पड़ता है बोतल के समेत, और इसको जो है तो 70-80 डिग्री सेंटीग्रेड पर कम से कम 15 मिनट तक उसको बॉयल करते हैं। तो उसमें ये सावधानी बरतनी पड़ती है कि इसमें जो बॉटल है वो हीट रेसिस्टेंट होना चाहिए, नहीं तो इसमें जाने के बाद बॉइलिंग वाटर में जो पानी में जाएगा ये उबलते पानी में, गर्म पानी में, तो वो फट सकता है। तो हीट रेसिस्टेंट बॉटल लेना होगा। दूसरा ये प्रॉब्लम है कि इसमें जहाँ पर आप मान लिया सेल के लिए डाल रहे हैं किसी नुक्कड़ पर, तो उसको फिर से बॉटल को वापस लेना होगा, ये एक है प्रॉब्लम। और ये बहुत आसान है, लेकिन बहुत आसान है शीशे के बोतल में करना, इसलिए कि उसको आप फिर से स्टरलाइज कर रहे हैं। और इस तरह से हम लोग RTS भी बना सकते हैं। घर में अगर आपके पास स्क्वैश का बोतल रखा हुआ है, तो आप कोई आपके यहाँ कोई आया गेस्ट आया है, तो आप उसमें 1/4 जो है आप ले लीजिए स्क्वैश डाल लीजिए ग्लास में, और 3/4 जो है 3 हिस्सा पानी उसमें मिला के आप उसमें पानी से चम्मच से चला के आप सर्व कर सकते हैं। तो ये हाईली न्यूट्रिशस हुआ। ये वही चीज़ फ्रूटी में भी है। फ्रूटी जो पैक करते हैं उसका जो पैकिंग इक्विपमेंट्स है, उसका जो पैकिंग ये है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत कॉस्टली है। 25-30 lakh रुपए का आता है वो सिर्फ पैकिंग के लिए। चीज़ उसमें वही है जो आपको हमने बताया बनाने के लिए, वैसे ही कर सकते हैं आप। तो ये हो गया है ना। अब एक चीज़ और बताते चले हम कि ग्रीन मैंगो के बारे में हमने नहीं बताया।
1: जी जी।
0: अभी हरा आम का देखिए सीजन है, और हरा आम बहुत टूट रहा है, गिर रहा है, आंधी तूफान आना नेचुरल है, वो आता ही है इस समय में। तो उसको हरा आम के लिए भी इसी तरह से हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं पल्प को, लेकिन इसमें क्या है कि आम को छीलने के बाद उसको हम लोग बॉयल कर लेते हैं। अच्छा। और बॉयल करने के बाद उसको जो है फिर उसको निकाल करके हाथ से बिल्कुल उसका पल्प निकाल कर उसको छान लेते हैं, और बॉयल जब हमने कर लिया है तो उसको पास्टोरीकरण करने की ज़रूरत नहीं है। बॉयलिंग से वो निकला है पल्प, चूँकि कड़ा पल्प रहता है कच्चे आम में, और बॉयलिंग के बाद उसको निकाल दिया, और निकालने के बाद उसको उसी तरह से प्रिजर्वेटिव हम लोग डाल देते हैं उसमें, जैसे हमने पके आम के लिए बताया, और क्वांटिटी वही रहेगी उसकी भी, सोडियम बेंजोएट और रशियन मेटाबिसल्फाइड। स्क्वैश बनाने के लिए भी सीख वही विधि अपनाई जाएगी, लेकिन उसमें यह है कि स्क्वैश बनाने के लिए उसमें हमने 1.5 किलो चीनी लिया था, क्योंकि आम मीठा होता है पका हुआ आम, तो कच्चे आम के लिए मुझे 2 किलो चीनी लेनी होगी और उसमें भी सैट्रिक एसिड डालना है, क्योंकि चीनी डाल रहे हैं तो सैट्रिक एसिड उस चीनी को खट्टे मीठे में बदलने के लिए उसको सैट्रिक एसिड को डालना पड़ता है, और चीनी की सफाई के लिए भी और उसमें जो गंदगी है वो भी निकल जाए उसके लिए भी करते हैं। और फिर उसके बाद उसको उसमें तभी है कि ग्रीन मैंगो में हम लोग चूँकि रंग नहीं होता है उसमें, तो उसमें हरा आम का जो है एसेंस भी डालते हैं और कलर भी डालते हैं, तो इसमें कलर और एसेंस का जो परसेंटेज है उसमें 0.001% है, हल्का बिल्कुल। अब वो देखिए, आप लोग ये नहीं समझिएगा कि जो बाज़ार में खाने का रंग मिल रहा है, रंग जो जनरली जो हलवाई लोग यूज़ कर रहे हैं कि वो उठा के ले आते हैं रंग और डाल देते हैं, उसमें लिखा हुआ है आप देखेंगे पैकेट पर कि दिस इज़ नॉट फॉर फूड पर्पस, तो उसके लिए अलग से बुश कंपनी का या और भी बहुत सी कंपनी है, तो उसका जो है तो वो रंग होता है अलग से आता है, वो खाने वाला रंग बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में आप देखिएगा कि वो अलग से आता है, 2 ग्राम 3 ग्राम का ही पैकेट आता है, ज़्यादा नहीं आता है, इसलिए बहुत कम पड़ता है वो, तो घर में किचन में रखने के लिए उतना ही बहुत है। तो ये रंग भी और एसेंस भी आपको अब देखिएगा कि एसेंस जो है FFB कंपनी का हम लोग यूज़ करते हैं, वो खाट का भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये एसेंस भी 0.001%, कलर डालना अगर है तो 0.001%, एप्पल ग्रीन कलर डालना होगा, एप्पल ग्रीन कलर डालना है ग्रीन मैंगो के लिए, और कलर तो राइप मैंगो में तो कलर रहता ही है, इसलिए उसमें देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गया RTS स्क्वैश और मैंगो पल्प को कैसे हम पके आम का और कच्चे आम का दोनों का प्रिजर्व कैसे करेंगे, इसके बारे में हमने बता दिया
1: जी। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस अच्छे और विशेष जानकारी के लिए, और आशा करते हैं आम को लेकर बहुत सारे लोग उत्सुक होते हैं, सभी लोगों को ये आम फल का राजा है इसलिए काफ़ी पसंद होता है, स्वादिष्ट भी है और पौष्टिकता भी इसमें बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसे लेकर इसके उत्पाद को लेकर क्या कुछ हम बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा लोगों के मन में उत्सुकता रहती है जो आपने जानकारी दी, तो आशा करते हैं हमारे सभी श्रोताओं को इस वार्ता को सुनकर लाभ मिलेगा।
0: विशेष जानकारी के लिए आप हमारे विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में, हमारा डिपार्टमेंट है फूड साइंस एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, खाद्य विज्ञान एवं तुलाई उपरांत प्रौद्योगिकी विभाग, इसमें आप संपर्क कर सकते हैं और हमसे आगे भी पर्सनली मिल सकते हैं, हम लोग कंसल्टेंसी भी देते हैं किसानों को, और इन उद्यमी हमारे यहाँ से बहुत से उद्यमी बने हैं, काफी लोग काम भी कर रहे हैं इस पे।
1: तो श्रोताओं अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को नमस्कार, आप सुन रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम करियर वॉच, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो लगभग हर छात्र की जिंदगी का हिस्सा है, यानी कि एग्जाम स्ट्रेस, यानी परीक्षा का तनाव। परीक्षाएं हमारे जीवन में आगे बढ़ने का एक जरिया मानी जाती है, और बचपन से हमें सिखाया भी जाता है कि अच्छे नंबर आएंगे तो अच्छे कॉलेज का रास्ता मिलेगा, अच्छा कॉलेज यानी कि अच्छा करियर। लेकिन इसी सोच के साथ एक दबाव भी हर बच्चे के ऊपर आ जाता है, अच्छा करने का और सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने का और असफलता से बचने का। थोड़ा बहुत तनाव तो सामान्य सा होता है, हर किसी की ज़िंदगी में थोड़ा बहुत तनाव होता है, और ये हमें सतर्क भी रखता है कि मेहनत करना चाहिए, मेहनत करने के लिए प्रेरित भी करता है। लेकिन जब यही तनाव हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारी सेहत, मानसिक और शारीरिक दोनों स्थिति पर बहुत बुरा असर डालता है। तो आज हम बात करने वाले एग्जाम स्ट्रेस के बारे में। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि एग्जाम स्ट्रेस होता क्या है। एग्जाम स्ट्रेस वो स्थिति है जब परीक्षा की तैयारी या परीक्षा के परिणाम को लेकर चिंता इतनी बढ़ जाती है कि वो आपकी नींद, आपकी भूख, ध्यान, व्यवहार तक को प्रभावित करती है। इसके लक्षण के बारे में बात करें तो सिर दर्द, नींद ना आना, चिड़चिड़ापन होना, बार बार घबराहट होना, पढ़ाई में मन न लगना, और अगर ये सारे लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं तो ये एक संकेत हो सकता है कि तनाव सामान्य स्तर से काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। और अगर एग्ज़ाम स्ट्रेस ना संभाला जाए तो क्या हो सकता है? कई बार होता है कि बच्चों को परेशानी होती है और वो किसी से बात करके या फिर किसी और तरीके से अपने टेंशन को कम कर लेते हैं, अपने एग्ज़ाम स्ट्रेस को कम कर लेते हैं। लेकिन अगर वो अपने स्ट्रेस को संभाल पाने में कामयाब नहीं होते हैं तो उन्हें नींद की समस्या हो सकती है। ज़्यादा तनाव से शरीर में कार्टिसोल नाम का एक हार्मोन बढ़ जाता है। इसका असर ये होता है कि हमारा दिमाग शांत नहीं हो पाता और नींद आने में दिक्कत होती है। और कई सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो रात भर करवटें बदलते रहते हैं, और इसका प्रभाव उनकी पढ़ाई पे ये पड़ता है कि नींद की कमी की वजह से उनकी याददाश्त और किसी चीज़ पर ध्यान देने की शक्ति दोनों ही कमज़ोर हो जाती है। इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान यही है कि रोज़ एक ही समय पर सोने जाएं और रोज़ एक ही समय पर उठें। कोशिश करें कि देर रात तक पढ़ाई करने से आप बचें और सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल या फिर किसी भी तरह का स्क्रीन इस्तेमाल करने से बचें, यानी कि टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, किसी भी स्क्रीन के इस्तेमाल से बचें। और कहते हैं कि जो संगीत होता है वो सबका और हर परिस्थिति में दोस्त होता है, तो बस अगर आपको नींद नहीं आ रही हो तो आप हल्का संगीत सुने, यानी कि ये नहीं कि डांस करने वाला संगीत हो, जो दिमाग को शांति दे, तो वैसे संगीत सुने, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल आप सुन सकते हैं। गहरी सांस लेने की तकनीक भी अपना सकते हैं। अगर आप कुछ देर तक गहरी गहरी सांस लेंगे, अपने दिमाग को शांत रखेंगे तो भी आपको नींद अच्छी आती है या फिर आपको नींद आने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। इसके अलावा आप, अभी हमने नींद के बारे में बात की, एक और परेशानी होती है मानसिक स्वास्थ्य, और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में तो हम बात कर रहे हैं ना। लगातार तनाव से क्या होता है, लगातार जब आप तनाव लेते हैं तो चिंता यानी कि एंग्जाइटी बढ़ जाती है, और वैसा छात्र जो कि एंग्जाइटी से जूझ रहा होता है वो सोचता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। देखिए, अगर आपको थोड़ा तनाव होता है तो आप कल की परीक्षा के बारे में परेशान होते हैं, यानी कि आप इस तरीके से कहते हैं कि मुझे कल के परीक्षा की बहुत चिंता है। लेकिन वही तनाव आगे बढ़कर चिंता या एंग्जाइटी में बदल जाती है तो फिर आप सोचते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरा तो पूरा का पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो ये होता है चिंता और एंग्जाइटी के, स्ट्रेस और एंग्जाइटी के बीच में अंतर। और अगर आप एंग्जाइटी तक पहुँच गए हैं तो फिर आप बहुत गहरे परेशानी में जा सकते हैं, यानी कि आप, हो सकता है कि आगे आप डिप्रेशन का भी शिकार हो जाएं अगर आप अपनी एंग्जाइटी का जल्दी से जल्दी समाधान नहीं ढूंढते हैं तो। इसके अलावा कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। अगर हम बर्नआउट का मतलब समझे तो बर्नआउट की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब आप बहुत लंबे समय तक तनाव में रहते हैं या और तनाव में मेहनत करते हैं, तो ऐसा होते होते आपकी मानसिक और शारीरिक, इसके साथ ही भावनात्मक रूप से भी आप पूरी तरीके से थक जाते हैं। और फिर ये सिर्फ थकान नहीं होता है, ये ऐसा थकान होता है कि अगर आप आराम भी करेंगे ना तो भी आपको लगेगा कि आप थके हुए हैं, क्योंकि आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं, तो उसका असर शरीर पर भी दिखने लगता है। और अगर हम बात करें कि बर्नआउट कैसा होता है, तो अगर आप लगातार पढ़ाई करते हैं या फिर काम करते हैं, ब्रेक नहीं लेते हैं और खुद से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, और इसके साथ ही आप छोटी छोटी गलती के लिए खुद को दोष देते हैं, और इसके अलावा आप नींद और खान पान को भी नज़रअंदाज करते हैं, तो ये आप लंबे समय तक करते हैं और जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, वो लगातार पढ़ाई करते हैं, ब्रेक नहीं लेते हैं और अपनी पढ़ाई से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, और अगर किसी टेस्ट में कम नंबर आ गया तो वो बहुत ज़्यादा खुद को कोसते हैं। नींद, खान पान, इन सारी चीज़ों को तो एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत सारे बच्चे नज़रअंदाज ही कर देते हैं, और ये लंबे समय तक चलता है तो धीरे धीरे शरीर और दिमाग की ऊर्जा ख़त्म होने लगती है और यहीं से शुरू होता है बर्नआउट। और बर्नआउट के मुख्य लक्षण के बारे में अगर हम बात करें तो जो आपके इमोशंस में चेंजेस दिखते हैं वो ये होता है कि हर समय आप थका थका महसूस करेंगे, आप काम नहीं कर रहे होंगे, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे होंगे, फिर भी आपका दिमाग ही, आपका मन ही लगेगा कि बिल्कुल थका हुआ है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन लगेगा, रोने का मन करेगा, खुद पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, आप चीज़ें भूलने लगेंगे, और इसके साथ ही मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर सकती जैसी सोच भी आपके अंदर आएगी और मोटिवेशन आपका ख़त्म हो जाता है। और अगर शारीरिक लक्षण के बारे में बात करें तो सिर दर्द होता है, नींद की समस्या होती है, कमजोरी होती है, पेट की भी समस्या शुरू हो जाती है। तो और अगर हम बात करें कि बर्नआउट पढ़ाई में कैसे दिखता है, तो आप टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन उसको आप फॉलो नहीं कर पाते हैं। आप जैसे ही किताब खोलते हैं आपको भारीपन सा महसूस होने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चल रहा होता है कि मुझसे तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो तो लगभग खत्म हो चुका है। और पढ़ते पढ़ते जब आप पढ़ रहे होते हैं आपको समझ नहीं आता है और फिर भी आप जबरदस्ती पढ़ने की कोशिश भी करते हैं, तो आपका दिमाग तो कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पा रहा है। आप पढ़ेंगे भी तो भूल जाएंगे, तो ऐसे में आप अचानक आपको गुस्सा आ जाएगा, आप रोने लग जाएंगे और खुद को बार बार यूजलेस जैसी चीजें बोलेंगे। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप समझें कि आप आलसी नहीं है, आपके अंदर पोटेंशियल है लेकिन ये मानसिक थकान है। आपने इससे पहले बहुत ज्यादा सोचा है, बहुत ज्यादा आपने चिंता की है, इसी का नतीजा बर्नआउट होता है। और बर्नआउट बहुत खतरनाक होता है क्योंकि अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो ये डिप्रेशन में बदल सकता है, आपकी एंग्जाइटी बढ़ सकती है, पढ़ाई आपकी या तो कम हो जाती है या तो फिर पूरी तरीके से आपकी पढ़ाई रुक भी सकती है। क्योंकि आत्मविश्वास बहुत ज्यादा गिर चुका होता है, आपको लगता है कि मुझसे पढ़ाई होगी ही नहीं, जबकि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। आप बर्नआउट से कैसे बाहर निकल सकते हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि आप आराम करें, ब्रेक लें। आपको अगर ये भी लग रहा है कि आप चिंता नहीं कर रहे हैं तो भी ध्यान रखें कि ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है। ऐसे भी कहा जाता है कि हर 40 से 50 मिनट के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक तो लेना ही चाहिए, 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, क्योंकि उसी वक्त पे हमारा दिमाग रिसेट होता है और खुद के प्रति थोड़े से नर्म बने। अगर कोई गलती हो गई या फिर किसी टेस्ट में कम नंबर आ गया तो भी सोचे कि कोई बात नहीं, आगे मैं कोशिश करूंगा या आगे मैं कोशिश करूंगी। इसके साथ ही किसी परिवार या दोस्त या फिर काउंसलर से भी आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। और ये धारणा तो बिल्कुल छोड़ दें कि चीज़ें एकदम 100% परफेक्ट होगी, आप मेहनत करेंगे तो उसका 100% रिजल्ट आएगा, ये चीज़ें नहीं होती है। कुछ भी पूरा 100% एकदम सटीक बहुत बेहतर नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छूटेगा ही, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है। अब हम आगे बढ़ते हुए शारीरिक समस्याओं के बारे में बात करें, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बात करें, तो तनाव का असर सिर्फ दिमाग पर नहीं पड़ता है, वो शरीर पर भी पड़ता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि बर्नआउट की समस्या में भी कई बार जो पेट के भी बीमारियां हैं वो होने लगती है। पेट से जुड़ी समस्याओं के साथ साथ मांसपेशियों में खिंचाव आने लगता है, पसीना आता है, दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती है, तो ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिलती है अगर आप बहुत टाइम तक तनाव से गुजरते हैं। आप एंजाइटी आपको होती है, तो अगर आपको लगातार तनाव होता है तो आपकी इम्यूनिटी भी कम हो सकती है, यानी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो सकती है। तो इसका समाधान क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सबसे पहला समाधान तो यही है कि आप तनाव को कम करें, और दूसरा कि संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं, रोज थोड़ा एक्सरसाइज करें और पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना जरूरी है। अब तक हमने बहुत सी बातें की, नींद की समस्या के बारे में बात की, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात की, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बात की, और इसके साथ ही पढ़ाई में भी आप गिरावट महसूस करते हैं। मतलब सोचिए, विडंबना ये है कि जिस परीक्षा के लिए छात्र तनाव लेते हैं वही तनाव उनकी तैयारी को कमजोर कर देता है। और जाहिर सी बात है ना, आप टेंशन में किसी भी काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, आपने पढ़ाई के लिए टेंशन ली और इसका असर आपकी पढ़ाई पर ही पड़ता है। कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो रात को सोने तो गए हैं लेकिन उनके दिमाग में पढ़ाई से जुड़ी हुई बातें चल रही है कि मेरा रिजल्ट ऐसा नहीं होगा तो मैं क्या करूंगी, ये या फिर और भी बहुत सारी संभावनाएं उनके दिमाग में चल रही होती है। इसका नतीजा ये होता है कि वो सोते देर से हैं, जागते देर से हैं, या जाग पहले भी जाते हैं तो वो फ्रेश महसूस नहीं करते हैं, पढ़ा हुआ भूल जाते हैं या अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। तो अंत में आपका जो तनाव है वो आपकी पढ़ाई को ही कमजोर बनाता है, और इसके साथ ही आपकी याददाश्त और निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित होती है। तो इसका समाधान यही है कि आप अपनी प्रगति को ट्रैक करें और बड़े लक्ष्य ना बनाएं, छोटे लक्ष्य बनाएं कि आज मुझे इतना ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और आपने हर रोज़ जो तरक्की की है, आपने हर रोज़ जो पढ़ा है उसको आप थोड़ा कंसिडर करें, उसके लिए आप खुद को थोड़ा थैंक यू बोलें कि हाँ मैंने आज ये किया, आप उसके लिए खुद को थोड़ा बधाई दें, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं सामाजिक दूरी के बारे में। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो परीक्षा के दौरान दोस्तों से, परिवार से दूरी बना लेते हैं और उन्हें लगता है कि बातचीत करना समय की बर्बादी है। जी नहीं, अगर आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो कि आपको अच्छा महसूस कराता है, जिससे आप अपने दिल की बातें कर सकते हैं, तो उससे बात करना कभी भी समय की बर्बादी हो ही नहीं सकती है। परिवार से खुल के बात करें और दोस्तों के साथ भी थोड़ा समय बिताएं, बहुत ज़्यादा नहीं कि बहुत ज़्यादा धमा चौकड़ी मचा रहे हैं, बाहर घूम फिर रहे हैं, इतना नहीं, पर थोड़ा बहुत समय तो दोस्तों के साथ परिवार के साथ बिताना ही चाहिए। और अगर आपको कुछ परेशानी हो रही है तो आप अपने दोस्तों से या अपने परिवार से शेयर करें, या फिर आपके कोई ऐसे टीचर हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं उनके साथ भी आप बातें अपनी साझा कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है और तनाव लगातार बढ़ जाता है, तो कुछ मामलों में ऐसा होता है कि जब तनाव असहनीय हो जाता है तो छात्र गलत रास्ते अपनाने लगते हैं, जैसे कि नशीले पदार्थों का सहारा लेना या फिर खुद को नुकसान पहुंचाने के भी उनके मन में विचार आते हैं। और दुर्भाग्य से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को नुकसान पहुंचाया। और ऐसी स्थिति में जरूरी है कि आप तुरंत मदद लें, अपने परिवार से, अपने दोस्त से, या फिर आप काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं, आप काउंसलर की मदद ले सकते हैं। और हमेशा एक बात याद रखें कि कोई भी परीक्षा आपकी जिंदगी से बड़ी नहीं है। और एग्जाम स्ट्रेस होता है, थोड़ा बहुत होता है, चलता है, वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन उसी को पकड़ कर आप बैठे रहेंगे तो आपकी पढ़ाई, आपकी जिंदगी, सारी चीजें प्रभावित होगी। तो एग्जाम स्ट्रेस हो रहा है तो ठीक है, लेकिन ये ज्यादा हो रहा है तो इससे निपटने के लिए आप क्या करें, संतुलित दिनचर्या बनाए, 7-8 घंटे की पूरी नींद ले, पौष्टिक और जो दिमाग के लिए अच्छे खाने हैं वो खाएं। जैसे कि दिमाग के लिए अच्छे खाने की बात करें तो आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो अंडा खा सकते हैं, अगर वेजिटेरियन आप हैं तो आप हरे साग सब्जी खाएं और ड्राई फ्रूट्स खाएं। इसके साथ ही आप नियमित व्यायाम करें, गहरी सांस लें, मेडिटेशन करें, और ज़रूरत हो तो आप काउंसलर की भी, विशेषज्ञ की भी सलाह ले सकते हैं। ध्यान रखें कि परीक्षा जो होता है वो जीवन का एक हिस्सा है, आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। बहुत सारी आपने कहानियां पढ़ी होंगी कि जो एग्जाम में फेल कर गए थे लेकिन वो बहुत आगे निकले, किसी और फील्ड में उन्होंने अच्छा किया। तो कुछ भी हो सकता है, बस अपने ऊपर से कभी भी विश्वास कम नहीं करना है, फिर चाहे कुछ भी हो। और मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं आपके कॉलेज के लिए या फिर किसी खास डिग्री में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन ये पूरी तरीके से आपका भविष्य तय नहीं करती है। और इसके साथ ही आपकी जो मानसिक और शारीरिक सेहत है वो आपके नंबर से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं और ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं, या फिर अगर आपके आसपास कोई ऐसा विद्यार्थी है जो परीक्षा के तनाव से जूझ रहा है, तो उसे बात करें, उसका साथ दे, और ज़रूरत पड़े तो किसी पेशेवर की मदद लेने में बिल्कुल हिचकिचाए नहीं। खुद पर भरोसा रखें, मेहनत करें, लेकिन अपने मन और शरीर के सुनना बिल्कुल ना भूलें। यानी कि आराम ज़रूरी है, अच्छा खान पान ज़रूरी है, योगा ज़रूरी है, मेडिटेशन ज़रूरी है। और इसी कुछ अच्छी बातों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। जाने से पहले कुछ खास बात कि स्वस्थ रहें, शांत रहें और सफलता की ओर बढ़ते रहें। और ध्यान रखें कि जहाँ भी आप थोड़ा भी वक्त बिताते हैं वहाँ की साफ सफाई की जिम्मेदारी आपकी भी होती है। आज के लिए करियर वॉच में इतना ही। मैं आपकी होस्ट, आपके दोस्त उमा लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 6 मई से 10 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आपको बता दें इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। अधिकतम तापमान 29 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 19 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 20 से 25% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 15 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह, आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, ऐसे में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें। साथ ही ध्यान दें खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें, साथ ही खाद और कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती करते हैं उन्हें बता दें, गर्मा मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट यानी कि माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी या थ्रिप्स कीट की निगरानी करना बहुत जरूरी होता है। होता है। किसान भाइयों, बचाव के लिए हेथु मेलाथियान 50 सीसी या डाई मेथो 8 सीसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा ना हो रही हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू, खीरा जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। इस कीट का प्रकोप अगर हो तो ऐसी स्थिति में शुरुआत से ही 1 किलोग्राम छोआ 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। भिंडी की फसल में अगर लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की 0.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी की फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें। अगर माइट कीट का प्रकोप

साफ दिखाई देना चाहिए और ये भी दिखना चाहिए कि ट्रैप को कहाँ बांधा गया है। ट्रैप को फल पकने से 60 दिन पहले बांधना चाहिए और 6 से 7 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें। गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन के हिसाब से दें और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। और ध्यान रखें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: उन्नत कृषि नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ यानी बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन। मैं हूं अनु और एक बार फिर उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। जी हां, किसान भाइयों के लिए उपयोगी बातें हम इस कार्यक्रम में लेकर आते हैं और आज फिर से एक विषय, केले के तने से रेशा कैसे बनाएं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे आज। और इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर अनिल पासवान। मैं आप सभी को बता दूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एक्सटेंशन एजुकेशन बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर में। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद मैडम।
2: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो केले के तने से फाइबर कैसे निकाला जाता है, ये रेशा कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें सभी को।
3: हाँ मैडम, मैं बता रहा हूँ। केले के तना जो है, किसान क्या करते हैं, किसान भाई लोग के वो फल जो है निकाल करके ले लेते हैं। उसके बाद जो उसका केले का जो प्लांट होता है, जो तना होता है, उसको ऐसे ही वेस्ट रूप में या तो खेत से बाहर के एरिया में उसको रख देते हैं, बाद में उसको जला भी देते हैं।
2: अच्छा,
3: तो एक ये बहुत अच्छी संभावना है जो कि केला की खेती करते हैं किसान भाई लोग, वो अच्छा इससे इनकम अपना बढ़ा सकते हैं फल के साथ साथ ये फाइबर निकाल करके।
2: जी, तो ये डॉक्टर साहब अभी जो आपने बताया कि ये निकाल सकते हैं और ये अच्छा मुनाफा व्यवसायिक तौर पर पा सकते हैं, तो ये तो हमने जाना, लेकिन इससे क्या क्या बनता है और कैसे मुनाफा प्राप्त करेंगे वो, ये भी बता दें।
3: हाँ, इसमें जो हम लोग मेथड्स अपनाते हैं कि

0: पर पहले कैसे निकालें उससे।
1: हाँ हाँ।
0: तो सबसे पहले तो जैसे एक एकड़ में लगभग 250 केजी रेशा निकल सकता है।
1: अच्छा।
0: उसका जो तना होता है उसको हमको एक जगह पे जहां हम यूनिट अपना मशीन्स बैठाएंगे, जहां यूनिट डेवलप करेंगे,
1: कारखाना,
0: हाँ कारखाना नहीं, स्मॉल स्केल पे उसको कहिए। अच्छा। एक रूम में भी रख करके वो हो सकता है।
1: अच्छा अच्छा।
0: हाँ, स्मॉल स्केल पे एक अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जहाँ हम मशीन रखेंगे वहाँ पे थंब तो खेतों में होता है, केला तो खेतों में होता है, वहाँ से उस थंब को लाना होगा। उसके बाद जो है हम उसको लगभग 60 सेंटीमीटर या 80 सेंटीमीटर तक टुकड़े में विभाजित कर लेंगे।
1: अच्छा।
0: और ऊपर का जो छिलका होता है ग्रीन वाला उसको हटा देंगे, और जो उसके अंदर जो लाइट कलर का रहता है उसको हम यूज करेंगे उस मशीन में। उसके बाद हम उसको रेशा के रूप में तैयार कर सकते हैं।
1: जी जी डॉक्टर साहब, मुनाफा की बात करें और क्या क्या बनता है इससे वो भी पता है।
0: हाँ, इससे लगभग 20-22 सामान इंडिया में बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं इससे उत्पाद फाइबर से। साउथ में जहाँ तक बात है उधर की वैरायटी कुछ ऐसा है लाल नेंद्रन सब, जिसका उपयोग जो है बहुत ये क्लोथ में कपड़ा बनाने में बहुत ज्यादा उसका रेशा जो है अच्छा है, तो कपड़ा बनाने में अच्छा कॉस्टली वो कपड़ा बिकता है मार्केट में। और इधर जो है जनरली रोबस्टा, केवेंडिस, ये सब जो है बत्तीसा, ये सब वैरायटी मालभोग ये सब एरिया में होता है बिहार में मेनली। तो इधर का जो है रेशा हल्का उससे थोड़ा रफ होता है, थोड़ा मोटा होता है, तो इससे हम लोग घरेलू उपयोग की सामान बना सकते हैं, जैसे बैग हुआ, डोरमेट की सामान हुआ, ये टेबल क्लॉथ हुआ, कैप हुआ, बैग हुआ, हैंड बैग हुआ, ये सब चीजें हम लोग, रोप हुआ, ये सब रस्सी जिसको कहते हैं उसको हम तैयार कर सकते हैं।
1: बिहार की बात करते हैं तो बिहार में केला से जो ये तना निकाला जाता है वो कहाँ कहाँ किया जाता है।
0: हाँ, ये मेनली जो है इस पे काम जो है सबसे पहले हाजीपुर में स्टार्ट किया गया, उसके बाद जो है कुछ आपका जो है भागलपुर जिले में भी एक एनजीओ है नवजनलोक करके। अच्छा। वो भी बहुत दिनों से इस पे काम कर रहे हैं भागलपुर जिले में। अभी पूर्णिया में स्मॉल स्केल पे एक नीरज कुमार हैं, कोई बहुत बड़ा बनाना ग्रोवर्स हैं, फार्मर्स हैं, वो जो है स्मॉल स्केल पे इस इंडस्ट्री को डेवलप किया है। समस्तीपुर में भी कुछ जगह ये इस पे काम हो रही है। तो इसको दो टाइप से निकाला जाता है, एक तो मैनुअली है, तो ये जो नवजनलोक जो एनजीओ थे वो मेनली मैनुअली काम करवाते थे इस पे से। तो इसमें बहुत हार्ड मेहनत लगता है लोगों को, दिन भर काम करेगा तो 250-500 ग्राम रेशा निकाल पाएगा।
1: डॉक्टर साहब, अभी मूल्य की बात कर लेते, कितना मूल्य प्राप्त कर सकते, क्या होता है एक फाइबर, केला के फाइबर का क्या मूल्य होता है?
0: रेशे में भी बनाना फाइबर जो है, केला का जो रेशा है उसकी भी क्वालिटी है मैडम। तो उसमें क्या होता है कि जो अच्छा क्वालिटी का रेशा है वो मार्केट में 150 रुपया तक आपका सेल हो जाएगा।
1: अच्छा, अच्छा।
0: जो उससे नीचे का है तो वो लगभग 80 से 100 रुपया तक आपका मार्केट में,
1: मतलब अच्छी क्वालिटी के तो अच्छे दाम।
0: हाँ, अच्छे दाम
1: जी
0: में सेल होंगे।
1: अच्छा। हाँ। और भारत में सबसे ज्यादा ये फाइबर कहाँ निकाला जाता है?
0: हाँ, भारत में सबसे ज्यादा फाइबर आपको साउथ एरिया में जैसे तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, कर्नाटक हो गया, यहाँ पे इसमें बहुत सारा ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बना हुआ है, जहाँ की लोग इसमें इससे रेशा से जो है बहुत सारे महिलाएं रेशा निकाल करके बहुत सारे ये घरेलू उत्पाद बना करके और मार्केट में बेचती हैं, और वह अपना जीवन यापन जो है वो अच्छे तरीके से उस पे चलाती है।
1: अभी डॉक्टर साहब आपने बताया कि इसके तनी के रेशे से जो है कपड़े बनाए जाते हैं, थैले बनाए जाते हैं और भी कई उत्पाद, तो कौन से उत्पाद की सबसे ज्यादा डिमांड होती है?
0: हाँ, इससे एक और चीज है, इससे पेपर भी बनता है।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो उस पेपर का डिमांड बहुत ज्यादा है दूसरे कंट्री में भी। वो पेपर जो है बहुत जल्दी खराब नहीं होता है, उसका लाइफ जो है बहुत ज्यादा होता है। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स जिसको बहुत दिनों तक रखना है सरकारी लेवल पे ही, तो इसलिए इसका जो है पेपर का डिमांड बहुत ज्यादा है। और नए में जो है घरेलू में जैसे देख रहे हैं कालीन भी इससे बनता है,
1: अच्छा,
0: केले के रेशे से, उसका भी डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में।
1: अच्छा, और जो मशीन होती है जो इस निकालती है, तो उसका क्या मूल्य आता है?
0: हाँ, जो मशीन्स है ये मशीन जो है बनाना फाइबर का, ये डेवलप हुआ है आपको टोबैको रिसर्च स्टेशन है तमिलनाडु में, नहीं आंध्र प्रदेश में।
1: अच्छा,
0: तो वहीं डेवलप किया गया है इसको टोबैको रिसर्च सेंटर पे। तो इस मशीन का लगभग जो है 75,000 अभी मूल्य पड़ता है, और इस मशीन की कैपेसिटी है लगभग 18-20 केजी रेशा एक दिन में निकाला जा सकता है उस मशीन के द्वारा।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, अब वैरायटी की बात कर लेते हैं, तो भारत में जो केला, केले के रेशे से जो फाइबर निकाला जाता है, तो सबसे अच्छा वैरायटी क्या होता है?
0: हाँ, मैंने पहले ही इसके बारे में बताया था कि जो साउथ में एक लाल नंदरन करके वैरायटी होती है उसका रेशा सबसे अच्छा है।
1: अच्छा,
0: हाँ, उसका इसलिए क्लॉथ्स में उसका यूज होता है, जिसका कि अच्छा खासा मूल्य जो है मार्केट में प्राप्त होता है। और इधर जो है बिहार लेवल पे इसका थोड़ा सा उससे क्वालिटी लो होता है, लेकिन इसका बहुत सारा डॉर्मेट्री सामान जैसे जूट का जितना सामान बनता है जूट के रेशे से, उसी अनुसार ये केले के रेशे से भी हम लोग बहुत सारा उत्पाद बना करके हमारी महिला जो है घर की महिला जो है उसमें इस काम में हाथ बटा करके अच्छा खासा इनकम जो है वो अपना कमा सकती है।
1: जी, एक और सवाल कि 1 kg फाइबर हमें निकालना है तो कितने केजी स्टेम की हमें आवश्यकता?
0: हाँ, 1 kg फाइबर निकालने के लिए लगभग 37-38 kg हमको स्टेम चाहिए, यानी तना चाहिए बनाना का, और जिसमें कि 1 kg हमको रेशा प्राप्त होगा। तो इसकी तैयारी जो है थोड़ा सा हम लोगों को पहले से करना पड़ता है, जैसे खेत में तना है उसको हम लोग लाएंगे अपने सेंटर पे जहां हमने मशीन को बैठाया है, वहां पे उसको 60 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर में टुकड़ा टुकड़ा में करके उसको फिर पार्ट वाइज निकाल करके उसको अलग अलग करके रखा जाता है, फिर उस मशीन में हम एक एक करके उसको डालेंगे और उधर से रेशा बन करके वो निकलेगा। अब फिर उस रेशे को फिर रस्सी के थ्रू, रस्सी बांधा हुआ रहता है उस आगे में जहाँ पे हम मशीन बैठाए हैं, उस पे एक झाड़नी जो लेडीज लोग यूज करता है केस झाड़ने के लिए, उस झाड़नी से हल्का फलका उस रेशे में मारते जाएंगे तो उससे क्या होगा रेशा थोड़ा फ्रेश निकलेगा, जो भी उसमें लगा हुआ है उस टाइप का वेस्ट प्रोडक्ट टाइप का कुछ भी सटा हुआ है वो सब निकल जाएगा उससे।
1: ठीक, तो यहाँ पर श्रोताओं, डॉक्टर साहब ने आपको केले के तने से रेशा कैसे बनते हैं इससे जुड़ी सारी बातें बताई हैं। तो ये एक नई बात है, एक नया टॉपिक था आप सभी के लिए, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे व्यावसायिक तौर पर लोग इसका इस्तेमाल करेंगे और इसे, इसके बारे में और ज़्यादा जानेंगे, इस्तेमाल करेंगे तो मुनाफा बहुत ज़्यादा होगा आपको। तो आशा करते हैं आज के इस वार्ता से आपको ज़रूर लाभ मिलेगा, कुछ जानने को ज़रूर मिला होगा नया। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
3: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 एफएम ग्रीन पर।
4: एफएम ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी को। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और अपने अपनों का विशेष ध्यान रख रहे होंगे। चलिए इन्हीं बातों के साथ हम करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत। आज कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सोचिए हम जितने भी फल खाते हैं वो सारे फल एक जैसे दिखते, उनका स्वाद एक जैसा होता, या फिर इतने खूबसूरत खूबसूरत जो फूल हम देखते हैं वो सारे के सारे फूल एक रंग के होते, एक जैसे होते, एक साइज के होते, एक शेप के होते, तो कितना नीरस होता, मतलब फूलों का पूरा मजा ही खत्म हो जाता। ठीक उसी तरीके से सोचिए, सारे इंसान एक जैसे दिखते, एक जैसे रंग के होते, एक साइज के होते, एक हाइट के होते, तो अच्छा होता क्या? नहीं ना। जब हम ये बातें जानते हैं कि एक रंग के, एक साइज के, एक हाइट के सारे लोग नहीं हो सकते हैं और उनका एक जैसा होना अच्छा लगेगा भी नहीं, तो फिर हम ऐसी उम्मीद क्यों रखते हैं कि अगर कोई ऐसा दिख रहा है तो मुझे भी ऐसा दिखना है, अगर कोई बहुत पतला है तो अच्छा नहीं है, अगर कोई बहुत मोटा है तो भी अच्छा नहीं है, ऐसी बातें हम क्यों सोचते हैं? अगर सब एक जैसे होंगे तो सबकी अपनी जो पहचान है, अपनी यूनिक पहचान जो है वो खत्म नहीं हो जाएगी। और आज के समय में जब सबके हाथ में सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे ना जाने कितनी तरह के फिल्टर्स लगे हुए हैं, उस पर जब लोग देखते हैं किसी और को, बिल्कुल फिट बॉडी है, निखरा हुआ रंग है, और ऐसे में जब हम खुद को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो बहुत खूबसूरत थी या बहुत खूबसूरत था, लेकिन हम उतने खूबसूरत नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी टाइप वैसी नहीं है या फिर हमारा रंग वैसा नहीं है। ऐसी कुछ बातें सोचकर हम बहुत परेशान हो जाते हैं और इन्हीं बातों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जी, आज बातें होने वाली है बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में। बॉडी पॉजिटिविटी, पता है आपको ये टर्म कब आया था? ये टर्म पहली बार आया था 1990s में। बॉडी पॉजिटिविटी ये टर्म पहली बार आया था, लेकिन उससे भी पहले बॉडी पॉजिटिविटी की जड़ें रखी जा चुकी थी, उसकी नींव रखी जा चुकी थी 1960s में। जी हाँ, 1960s में फैट एक्सेप्टेंस मूवमेंट चला था, यानी कि जब मोटे लोगों को उनके मोटे होने के लिए उनका मजाक नहीं बनाया जाता था, तब एक ये मूवमेंट चला था कि मोटे लोगों का उनका मजाक नहीं बनाया जाएगा, उन्हें अपने से अलग नहीं समझा जाएगा। फिर 1990s में एक प्रॉपर टर्म आया बॉडी पॉजिटिविटी, और इसके बाद अब हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस बात को समझने की, बॉडी पॉजिटिविटी को समझने की, और अलग अलग तरह की बॉडी को एडमायर करने की, अलग अलग बॉडी की खूबसूरती को समझने की। आज हर कोई एक जैसी आंखें चाहता है, एक जैसे होंठ चाहता है, एक जैसी हाइट चाहता है, एक जैसा बॉडी साइज चाहता है, यानी कि एक टाइप में फिट होना है। अगर सब एक जैसा हो तो कैसे अच्छा लगेगा? मैंने शुरुआत में कहा था ना, आप सोचिए कि सारे फूल एक जैसे हों, उनके रंग एक जैसे हों, उनकी बनावट एक जैसी हो, तो कितना नीरस हो जाएगा, नहीं? ठीक उसी तरह से। और आज के समय में आपको पता है, बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में पता नहीं होने की वजह से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। जी हाँ, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा तादाद लड़कियों की है, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियों के मन में हमेशा ये बात बैठी होती है कि वो कैसी दिखती हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि वो कैसा सोचती है, वो क्या काम करती हैं। सिर्फ डिप्रेशन नहीं, बल्कि उनका कॉन्फिडेंस होता है वो चला जाता है, उनमें खाने की बहुत अजीब सी आदत हो जाती है। इसके बारे में हम बहुत विस्तार से बातें करेंगे। एक स्टडी बताती है कि 50% से भी ज़्यादा लड़कियां अपने शरीर को अच्छा ना समझते हुए डिप्रेशन में चली जाती है, या फिर उन्हें खाने की बुरी आदत लग जाती है। सबसे पहले तो आइए हम मोटापे की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर बॉडी पॉजिटिविटी की शुरुआत हुई थी तो वो मोटापे से ही हुई थी, और आज भी पता नहीं क्यों हम मोटे लोगों का मजाक बनाते हैं। आप बॉलीवुड फिल्मों में देखिए, कभी आपको हीरो या हीरोइन मोटा या मोटी नहीं दिखेगी। अगर कोई मोटा किरदार है तो उसे बहुत फनी दिखाया जाता है। ये बहुत गलत बात है जो फिल्मों ने भी हमारे दिमाग में डाली है। और अगर हम मोटापे की बात करें,
1: तो कुछ लोगों की बॉडी टाइप वैसी ही होती है, वो थोड़े मोटे होते हैं लेकिन उनमें मोटापे से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होती है। आप अभी के टाइम में बहुत सारे ऐसे हीरो या हीरोइन को देखेंगे जो बहुत पतले नहीं है लेकिन वो खुलकर कहते हैं कि मुझे इससे जुड़ी हुई कोई बीमारी नहीं है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। स्वस्थ रहना सबसे जरूरी है। आप मोटे हैं आप पतले हैं ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप स्वस्थ हैं या नहीं। अगर आप बिल्कुल लीन एंड थीन नहीं है, आप बिल्कुल पतले नहीं है लेकिन आपको कोई बीमारी नहीं है तो फिर ठीक है, आप बिल्कुल दौड़ भाग पा रहे हैं, आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है तो बिल्कुल ठीक है। आप बहुत मोटे, आपको लग रहा है कि आप थोड़े मोटे हैं लेकिन फिर भी आपको मोटापे से जुड़ी कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि आपका ये बॉडी टाइप बिल्कुल ठीक है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मोटापे के बाद अब हम आते हैं रंग पे। देखिए रंग जो हमें दिया है वो भगवान ने दिया है, उसे हम नहीं बदल सकते हैं। और आप जो टीवी पर या फिर अलग अलग जगहों पर जो प्रचार देखते हैं अलग अलग तरह की क्रीमों का या फिर अलग अलग तरह की चीज़ों का जो ये दावा करती है कि आपके नेचुरल रंग को आपके प्राकृतिक रंग को वो बदल सकती है, तो वो बिल्कुल गलत है, वो आपको ठग रहे हैं या फिर आपके शरीर में आपके चेहरे की मदद से बहुत सारे केमिकल्स ठूसे जा रहे हैं जो आपको आगे जाकर बहुत नुकसान पहुँचाने वाले हैं। तो ऐसे नुकसान से बचिए और आपकी जो नेचुरल स्किन है जो भगवान ने आपको तोहफे में दिया है उसे क्यों ना प्यार करें। और हमारे आसपास के लोगों को भी यह समझना होगा कि हर किसी का रंग एक जैसा नहीं हो सकता है ना, हर फूल एक रंग का हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। और सिर्फ जो सफेद फूल होते हैं वही खूबसूरत थोड़ी होते हैं, अलग अलग रंग के फूल भी बहुत खूबसूरत होते हैं। ठीक उसी तरह से अलग अलग रंग का हर इंसान खूबसूरत है, बस उसके अंदर चमक होनी चाहिए। और हाँ, अगर आप स्वस्थ नहीं होते हैं तो फिर आप चाहे गोरे हो, आप चाहे काले हो, आप सांवले हो, आपका चेहरा बिल्कुल डल हो जाएगा, आपके चेहरे की जो चमक है वो चली जाएगी। कुछ लोग सांवले होते हैं पर बहुत खूबसूरत दिखते हैं, कुछ लोग गोरे होते हैं पर उनके चेहरे पर चमक ही नहीं होती, वो आकर्षण ही नहीं होता है क्योंकि उनके पेट में गड़बड़ी होती है। जी हाँ, अगर आपके पेट में गड़बड़ी है तो आपके चेहरे की चमक चली जाएगी, फिर आप गोरे हो काले हो मायने नहीं रखता है। तो खूबसूरत गोरा भी हो सकता है, खूबसूरत काला भी हो सकता है, खूबसूरत सांवला भी हो सकता है, बस आप अंदर से स्वस्थ होने चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में कही जा सकती है। इसके अलावा भी हम अपने चेहरे के अलग अलग फीचर्स को देखकर सोचते हैं कि मेरी नाक थोड़ी छोटी रह गई या फिर मेरी आंखें उतनी खूबसूरत नहीं है। आंखें देखने का काम करती है, आंखें आपको नजरिया देती है, आंखें आपको समझाती है सच्चाई। तो फिर आंखें कैसी भी हो, काम तो वही है, आंखें स्वस्थ हो, बस इतनी ही बात काफी है। और आपकी आंखें आपकी पहचान होती है, आपकी आंखें आपका जरिया होती है इस दुनिया को देखने की, बस इतना ही काफी है ना। और इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हो सकती है, बस आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि आप अंदर से स्वस्थ हो तो आपकी खूबसूरती बहुत अच्छे से झलकेगी। आपका किरदार बेहतर हो तो लोग अपने आप आपके ओर आकर्षित होंगे, और आपका किरदार बढ़िया होगा तो अच्छे लोग ही आपकी ओर आकर्षित होंगे। और इससे अच्छा क्या हो सकता है। अब देखिए, हमने बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में बात कर ली और ये भी कहा कि अगर आप मोटे हैं और आपको कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर भी कह रहा है कि आपका वेट बिल्कुल ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप मोटे हैं और डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको आपका वजन कम करना चाहिए, तो ऐसे टाइम पर आप ये नहीं कह सकते कि हमें तो बॉडी पॉजिटिविटी को फॉलो करना चाहिए, हम किसी को मोटा कैसे कह सकते हैं, ये गलत है। आपको स्वस्थ रहने की ज़रूरत है। अगर आपको डॉक्टर कहते हैं कि आपको वेट कम करना चाहिए तो वेट कम कीजिए। और जैसे ही वेट कम करने वाली बात आती है, हम पहुंच जाते हैं फटाक से अपने खाने पर और अपने खाने पर प्रतिबंध लगा देते हैं। और आजकल बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो पूरे दिन नहीं खा रहे हैं या बहुत कम खा रहे हैं, और इसे कहते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स। और ये बहुत बहुत भयानक बीमारी होती है। मतलब इसमें जो बच्चियां हैं, जो युवा बच्चियां हैं या युवा बच्चे हैं, वो बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ जाते हैं। और आपको ये समझना होगा कि वजन कम करने का एक स्वस्थ तरीका हो सकता है और होता है। आप खाना अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, प्रॉपर मील लीजिए। ये नहीं कि सुबह का नाश्ता हम नहीं करेंगे या फिर रात का खाना हम नहीं खाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रॉपर तरीके से खाइए, आप डॉक्टर से सलाह लीजिए या फिर अपने शरीर की भी बात सुन सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत कुछ खा लेने पर भी मोटे नहीं होते, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ चीज़ें उन्हें सूट नहीं करती है, तो उन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। जी हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि आप अगर खाने के साथ कितना भी परहेज कर ले, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप किसी भी तरीके से स्वस्थ नहीं रहेंगे। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप ये सोचेंगे कि मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा और एक हफ्ते में ही हम अपना वेट
5: लॉस कर लेंगे तो ये नहीं हो सकता है और होना भी नहीं चाहिए। अगर आप एक हफ्ते में अपना वेट लॉस कर रहे हैं तो वो बहुत अनहेल्दी होगा और आपको बहुत तरह से नुकसान पहुंचाएगा। जो चीजें धीरे होती है वो खूबसूरत होती है, वो ज्यादा हेल्दी होती है, इस बात का ध्यान रखें। और ध्यान रखें कि खाने के साथ साथ एक्सरसाइज करना भी जरूरी है, लेकिन सारी चीजें लिमिट में होनी चाहिए और खुद से बहुत प्यार करें। पता है इसके लिए आप एक और काम कर सकते हैं, आईना हर सुबह, या फिर सुबह वैसे बहुत अच्छा होता है, बाकी अगर आपको जब भी वक्त मिले उस वक्त पे आप आईने के सामने जाकर खड़े हो जाइए और खुद की तारीफ कीजिए, खुद को पहले निहारिए और खुद से प्यार कीजिए।

लीजिए। देखिए कुछ ही दिनों में आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना वो बढ़ जाएगा और आप खुद से ज़्यादा प्यार करने लगेंगे। और इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया पर हैं और कुछ पेजेस ऐसे हैं जो आपको कह रहे हैं कि आँखें ऐसी नहीं होनी चाहिए, बॉडी टाइप ऐसा नहीं होना चाहिए और आपको वो बुरा फील करा रहे हैं, लो फील करा रहे हैं, तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि उस सोशल मीडिया पेज को एकदम ब्लॉक कर दीजिए। एक और बात की ध्यान रखिए, सोशल मीडिया पे जो आजकल लोग फिल्टर्स लगा रहे हैं ना वो भी रियल नहीं है। सोशल मीडिया पे जो लोग दिख रहे हैं वो सच्चे नहीं होते हैं। आपके आसपास जो लोग दिख रहे हैं वो सच्चे हैं, तो अपने आसपास के लोगों को देखिए। और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी परेशानी से जूझ रहा है, यानी कि अपने बॉडी में वो खुश नहीं है, वो बहुत ही अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, बहुत सारे क्रीम्स अपने चेहरे पर लगा रहा है ताकि वो थोड़ा और ज़्यादा निखर जाए, या फिर बहुत कम खा रहा है ताकि वो पतला हो जाए, तो उसे ये समझाइए कि भाई देखो तुम्हारे जो चेहरे का रंग है वो नहीं बदल सकता है, बस उसमें चमक लाई जा सकती है बहुत सारा पानी पीकर, हेल्दी खाना खाकर और एक्सरसाइज करके। और तुम अगर मोटे हो और फिर भी तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम अच्छे से दौड़ भाग पा रहे हो, सब कुछ ठीक है, तो तुम मोटे नहीं हो, तुम्हारे शरीर का टाइप ही यही है। और अगर तुम पतले भी हो तो सेम वही चीज़ तुम्हारे ऊपर अप्लाई होता है। तो अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा है तो उसे जरूर समझाइए, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। हालांकि ये जो परेशानी है लड़कियों में ज्यादा देखी जाती है। तो चलिए आज के कार्यक्रम में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खुद से ढेर सारा प्यार करेंगे, और एक और बात कि आप जहां भी थोड़ा भी वक्त बिताएंगे वहां की साफ सफाई की जिम्मेदारी आपकी है, इस बात का ध्यान रखें और अपने अपनों से करें ढेर सारा प्यार और रखें अपना खूब ख्याल। नमस्कार, बने रहे हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ, क्योंकि हम है हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे अनु और आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से 90.8 FM ग्रीन, जिसका उद्देश्य है आपकी जिंदगी को हरियाली से खुशहाली की ओर ले जाना। तो आज आपको बता दें, अगर हरियाली की बात आती है तो बहुत ज़रूरी बात ये है हमारे किसान भाइयों के लिए, आज पर्यावरण काफ़ी दूषित हो चुका है और इसकी एक वजह कहीं ना कहीं आपसे भी निकलती है और वो है पराली का जलाना। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है फसल अवशेष प्रबंधन। जी हाँ, ये खास तौर पर आपसे जुड़ा हुआ है, यानी कि आप जो पराली जला रहे हैं उसका भयावह जो संकट है वो आसपास के शहरों में राज्यों में देखने को मिल रहा है। तो आज इसके प्रबंधन के बारे में हम जानेंगे और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं इंजीनियर पंकज कुमार जी और ये हैं सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप हमारे स्टूडियो आए हैं इस खास और महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए। तो सबसे पहले अगर बात करें, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि इसका बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे पर्यावरण पर, लेकिन अगर विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे कि इन पराली जलाने से यानी कि फसल अवशेषों को जलाने से हमारे पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है।
2: धन्यवाद मैडम। देखिए, किसान अभी जैसे कि कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग कर रहे हैं, होता क्या है कि कंबाइन हार्वेस्टर से जब आप फसल कटाई करते हैं, जैसे 13 से 14 फीट में अगर कंबाइन हार्वेस्टर अगर कटाई करता है तो पुआल जो है उसका पीछे 6 फीट पर गिरता है।
1: अच्छा।
2: और किसान को क्या होता है कि अगला फसल लगाने के लिए उस पुआल को उठाने के लिए मजदूर नहीं मिल पाता है समय पर। इसके लिए क्या होता है कि हम अगला जो फसल हम रबी का लगाएंगे उसमें हमको मजदूर नहीं मिलने के चलते फसल लगाने में हमको लेट होता है। तो उसमें हम लोग क्या किसान भाइयों करते क्या है कि उसमें आग लगा देते हैं। अब आग लगाने से
1: मतलब कि ज्यादा मेहनत ना करना पड़े इसलिए आग लगा देते हैं।
2: जी, तो उसमें होता क्या है कि 1 टन पुआल जलने से जो हमको पर्यावरण में जो नुकसान होता है वो 3 किलो हवा में मिलने वाला हानिकारक तत्व निकलते हैं, 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और 2 किलो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है।
1: अच्छा।
2: अगर यही पुआल को अगर आप 1 टन पुआल मिट्टी में अगर मिलाते हैं तो आपको लाभ मिलता है 30 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो पोटास और 7 किलो सल्फर और 800 किलो ऑर्गेनिक कार्बन। तो किसान भाइयों को अब क्या है कि इसको हम मिट्टी में मिलाएंगे कैसे, तो इसके लिए बहुत सा मार्केट में मशीन उपलब्ध है, उसके लिए आपको जानकारी रखना होगा। जैसे आप कंबाइन हार्वेस्टर से अगर आप काटते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि कंबाइन हार्वेस्टर में SMS सिस्टम लगा हुआ है। SMS का मतलब होता है स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि जो पुआल आपको पीछे गिर रहा है वो आपको 13 से 14 फीट पर जो आप जो का कटिंग हो रहा है और 6 फीट पर ना गिर करके 13 से 14 फीट पर पूरा एकदम छिड़काव हो जाए पुआल का। ऐसे होने से क्या होगा कि आप एक मशीन आता है हैप्पी सीडर।
1: अच्छा।
2: अगर आप हैप्पी सीडर चलाते हैं तो आपको उस वैसे खेत में हैप्पी सीडर चलेगा। अब हैप्पी सीडर का जैसे है क्या कि 40 से 45 HP का अगर आप हैप्पी सीडर आप लेते हैं तो उसमें आपको 3 से 4 हेक्टर प्रति घंटा में आपको बुआई वही दिन हो जाएगा जिस दिन आप फसल की कटाई करते हैं। और इससे होता क्या है कि खेत में जिस दिन आप फसल की कटाई कर रहे हैं उस समय नमी पर्याप्त रहता है, अगर उसी दिन आपका बुआई हो जाता है तो आप आपको जो नमी मिलेगा, आपका जो पुआल उसमें गिरा हुआ है वो लाइन से लाइन के बीच में मल्च का काम करेगा, तो आपको नमी उसमें बरकरार बनाए रखेगा और उसमें आपको गेहूं का जो आपको जो जर्मिनेशन होता है, जो जमाव होता है वो अच्छा होता है। और दूसरी मशीन है कि जैसे रोटरी मल्चर, रोटरी मल्चर भी आपको 45 से 50 एचपी के ट्रैक्टर में आपको चलेगा, अब से 40 से 45 एचपी के ट्रैक्टर में भी चलने वाला मशीन है। इससे 0.38 से लेकर के 0.4 हेक्टर प्रति घंटा के हिसाब से आपको ये मशीन कार्य करेगा। दूसरा है कि आपको रिवर्सेबल एमबी प्लाव चला करके आप जो है उसको दबा सकते हैं मिट्टी के अंदर। रिवर्सेबल एमबी प्लाव भी जो है 40 से 45 एचपी का ट्रैक्टर में आपको कार्य करेगा, इससे आपको 0.4 हेक्टर प्रति घंटा आपको इसमें कार्य करेगा। और भी मशीनें हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम जानवर को, अगर आप पुआल का ज़रूरत है जानवर को आपको खिलाना चाहते हैं, तो इसमें आपको स्ट्रॉ बेलर मशीन का आपको प्रयोग करिए। ये क्या मशीन है कि आप सारे पुआल को उठा करके एक ठोस गट्ठर बना देगा और स्ट्रॉ बेलर जो है 0.34 से लेकर के 0.38 हेक्टेयर प्रति घंटा के हिसाब से ये कार्य करेगा और ये सारे पुआल को आपको उठा देगा, ताकि अगले फसल को बुआई करने में आपको कहीं कोई भी कठिनाई नहीं होगा। और अगला मशीन है पैडी स्ट्रॉ चॉपर। इसमें क्या होता है कि जो भी आपका पुआल गिरा हुआ है उसको चॉप करके आपके फील्ड में पूरा मिला देगा, और ये मशीन जो है 0.3 से लेकर के 0.4 हेक्टेयर आपको प्रति घंटा के हिसाब से आपको काम करेगा। तो आप अगर पुआल अपने खेत में अगर मिलाते हैं तो आपका खेत का जो पैदावार होता है वो आपको बढ़ेगा, आपको खेत में एनपीके का मात्रा बढ़ेगा और भी सूक्ष्म पोषक तत्व बढ़ेंगे, और केमिकल फर्टिलाइजर आप कम प्रयोग करेंगे और मिट्टी सुधरेगा। और इस वैसे खेत में आप बिना जुताई किए हुए जीरो टिलेज मशीन से आप बुआई कर सकते हैं। जीरो टिलेज मशीन 35 से लेकर के 40 एचपी के ट्रैक्टर में चलने योग्य मशीन है, जिससे आप 0.35 से लेकर के 0.4 हेक्टेयर प्रति घंटा के हिसाब से ये मशीन काम करेगी। और इस मशीन से आप 60 से 70% डीजल बचा सकते हैं।
1: तो आपने जाना किसान भाइयों की पराली ना जलाएं, क्योंकि इसके अलावा बहुत सारे उपाय हैं, विकल्प हैं आपके पास। यहाँ पर सर ने बताया मशीनों के बारे में, आप उन मशीनों का इस्तेमाल करके जो फसल अवशेष हैं आप उन्हें अपने खेतों में डाल सकते हैं, इससे पोषक तत्व उन्हें मिलते हैं। तो ज़रूरी है इन बातों को जानें, और इन जानकारियों की सहायता से आप इस पर्यावरण को बचा सकते हैं, आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपने मृदा के जो पोषक तत्व हैं उन्हें भी बचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली जानकारी के साथ हम फिर से उपस्थित होंगी 90.8 FM ग्रीन पर, तो बने रहिए हमारे साथ, सुनना ना भूलें उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि।